0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা মোহনায় যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। এখন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নবীন সাক্সেনা। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे।

0: के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা, এখন রামচরিতমানস, আজ 224তম পর্ব।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कुट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल

0: में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह छह देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल एक मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. Teachers' Day is observed every year on 5th of September to mark the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, a renowned educationist, author, philosopher and former president. The occasion honours the vital role of teachers and educators in nation building. On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of the country's premier institutions of higher education. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has, over the past century, nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers, and nation builders. External Affairs Minister S. Jayashankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jayashankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following their talks in Warsaw yesterday. The External Affairs Minister reiterated that India believes that endless war must give way to an end to war. He said wars have no winners and only lead to more deaths, destruction and global costs.
2: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves and more cost to the rest of the world.
1: The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing border updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश

0: के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम

0: बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। उस वक्त अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद

0: दो को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning. This is Akashvani.

नमस्कार, सुप्रभात। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर यह है चैनल संचयिता। 9:10 और 20 सेकंड समय हो रहा है कार्यक्रम रसधारा का।

जिंदगी से बढ़कर कोई गुरु कोई शिक्षक नहीं होता, ऐसा सभी कहते हैं। और इसी तरह से गिरते संभलते, हंसते गाते रोते हम जीवन का पाठ पढ़ते हैं। जीवन हमें यही बतलाता है कि चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, सुख के दिन भी करीब ही होते हैं। और जब सुख के दिन रहे तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं होती, और इसीलिए चाहे गम हो या खुशी, हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए। कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, कुछ समय के साथ बनते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुद से मिलाते हैं। जिंदगी की ही तरह शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। ये केवल पढ़ाने और पढ़ने का रिश्ता नहीं, बल्कि सीखने, समझने, विश्वास करने और आगे बढ़ने का रिश्ता है। कभी शिक्षक की एक डांट हमें सही रास्ते पर ले आती है, तो कभी उसके प्रोत्साहन के दो शब्द हमारे भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगा देते हैं। और कभी सालों बाद जब हम जीवन की किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब शिक्षक की कही कोई बात अचानक याद आ जाती है और हमें रास्ता दिखा जाती है। आज रसधारा में हम इसी रिश्ते की बात करेंगे, उस रिश्ते की जो कक्षा से शुरू होकर जीवन भर हमारे साथ चलता है।

कितना सुंदर भाव है गुरु को ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत मानना। भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान हमेशा सम्मान का रहा है, लेकिन आज के समय में शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता केवल परंपरा का विषय नहीं बल्कि संवेदनशीलता, संवाद और विश्वास का भी विषय है। कई बार शिक्षक हमारे जीवन में उस समय आते हैं जब हम खुद को पहचानना शुरू कर रहे होते हैं। हम में से कोई गणित से डरता

है कोई मंच पर बोलने से घबराता है, कोई अपनी प्रतिभा को लेकर आश्वस्त नहीं होता। ऐसे समय में शिक्षक का एक वाक्य, तुम कर सकते हो, बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। यह रिश्ता इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें अनुभव, अनुशासन, स्नेह और जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि उत्तर क्या है, बल्कि ये सिखाता है कि उत्तर तक पहुंचना कैसे है।

0: चक टू शी इज न्यू कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम शी इज कूल पर दिल की है फूल बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल
1: व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी
0: चक थ्री शी स्टिंग्स लाइक अ बी गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला
2: खेलने वाला खेल रहेगा रोकने वाला फेल रहेगा जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके भैंस की

0: ऑन द फ्लोर घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी सबसे सीनियर प्लेयर है ना करती है मनमानी हिम्मत और हिमाकत है टीम की है खलनायक अपने दिन में गेम बदल दे आजा बिंदिया नायक
1: अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से लाइन पे इनको लाना है साम दाम दन भेद से
0: जट फाइव जिमी अडाइव कैप्टन है और गोली भी पर घर का गोल खाली है एक तरफ है बॉल और स्टिक दूसरी तरफ खुशहाली है
2: शादी मुश्किल गेम है पर प्लेयर हार कब माने हैं विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन इसके

इट्स अ फिक्स। कुंभकर्ण है टीम की, खैर है जब तक सोई रे, आए जब ये जोश टिकने ना पाए कोई रे, ओ आई रे ओ छाई रे, शी स्कोर बलबीर कौर।

0: है सीनियर प्लेयर्स दोनों जानी मानी, एक है शरारत दूजी है मनमानी, याद कराएं नानी को भी नानी, आलिया बोस एंड गुंजन लखानी।
1: बदनामी में भी नाम है, कौन इन्हें समझाए,
2: कुछ का तो बस काम है, मजे के दुश्मन।

हर विद्यार्थी की अपनी कहानी होती है। कोई पढ़ाई में आगे होता है, कोई खेल में, कोई संगीत में, कोई चित्रकला में, लेकिन हर विद्यार्थी को कभी न कभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसके काबिलियत पर भरोसा करे। एक छोटी सी बात कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जिसे क्लास में कविता पढ़ने के लिए कहा जाता है, वो घबराता है, शब्द भूल जाता है और बैठ जाता है। पूरी कक्षा हंसती है, लेकिन शिक्षक कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, इस बार धीरे धीरे पढ़ो। बच्चा दोबारा पढ़ता है, इस बार थोड़ा बेहतर। शिक्षक मुस्कुरा कर कहते हैं, देखा, तुम कर सकते हो। श्रोताओं, हो सकता है उस दिन उस बच्चे ने केवल एक कविता पढ़ी हो, लेकिन उसके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ वो शायद जीवन भर उसके साथ रहा हो। यही शिक्षक और छात्रों का रिश्ता है, जहां एक छोटी सी कोशिश को भी महत्व दिया जाता है और एक छोटी सी सफलता को भी प्रोत्साहन मिलता है। हर बच्चा बड़ा होकर शिक्षक नहीं बनता, लेकिन जो बनता है उसे पता होता है कि बच्चे अपने गुरुओं को, शिक्षकों को किस तरह से आइडलाइज करते हैं। उनकी एक छोटी सी मुस्कुराहट, हंसी, एक शब्द इनकरेजमेंट के उनमें कितना आत्मविश्वास भर देता है। अपने पिता माता, घर से बाहर एक बच्चे को अगर किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास, भरोसा और श्रद्धा किसी के लिए होती है तो वो गुरु होता है, शिक्षक होता है।

शिक्षक केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते हैं, बल्कि वो विद्यार्थियों को जीवन की कई छोटी बड़ी बातों से भी परिचित कराते हैं। समय का महत्व, अनुशासन की आदत, दूसरों का सम्मान, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, असफलता से घबराना नहीं, ये सब बातें भी शिक्षा का हिस्सा है। कभी शिक्षक हमें बताते हैं कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है और अपनी गलती को छुपाना बड़ी गलती है। कभी वे समझाते हैं कि प्रतियोगिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी क्षमता को पहचानना, और कभी ये सिखाते हैं कि सफलता केवल अच्छे अंकों का नाम नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने का भी नाम है। यही कारण है कि शिक्षक का रिश्ता केवल स्कूल की घंटी बजने तक सीमित नहीं रहती। उनसे मिली जो सीख होती है वो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमारे काम भी आती है। शिक्षक और छात्रों का रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी इसमें हंसी होती है, कभी शरारत, कभी शिकायत और कभी डांट भी। कई छात्रों को लगता है कि शिक्षक उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही डांट याद आती है और समझ में आता है कि उसके पीछे चिंता थी, अपेक्षा थी और बेहतर बनाने की इच्छा भी थी। हाँ, ये भी जरूरी है कि अनुशासन के साथ सम्मान और संवेदनशीलता भी बनी रहे। बच्चे बच्चे नहीं होते, या फिर बच्चे बच्चे ही होते हैं, पर उनमें भी आत्मसम्मान होता है जिसे ठेस कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी की गलती को सुधारता है, लेकिन उसके आत्मसम्मान का भी ध्यान रखता है, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन वही है जो हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दे, न कि अपने बारे में छोटा महसूस कराए।

भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंध की अनेक प्रेरक कथाएं मिलती है। इन कथाओं में गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला भी होता है। लेकिन आज के समय में गुरु शिष्य संबंध का अर्थ केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। आज शिक्षक विद्यार्थियों को नई तकनीक, नए विचार और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बैठाने में भी मदद करते हैं। एक शिक्षक कभी कक्षा में मार्गदर्शक होता है, कभी किसी प्रतियोगिता की तैयारी में सहयोगी, कभी किसी कठिन परिस्थिति में सलाह देने वाला और कभी जीवन के किसी मोड़ पर प्रेरणा देने वाला। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है जो समय के साथ बदलता है लेकिन उसका मूल भाव बना रहता है।

अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षक की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी का सही उपयोग करना दो अलग बातें हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल तथ्य नहीं बताते, बल्कि उन्हें सोचने, प्रश्न पूछने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता भी विकसित करने में मदद करते हैं। आज के समय में एक शिक्षक का दायित्व और भी व्यापक हो गया है। उसे विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ डिजिटल दुनिया की चुनौतियां, जिम्मेदारियां और मानवीय मूल्यों के प्रति भी जागरूक करना होता है। कभी कभी हम अपने पुराने शिक्षकों से वर्षों बाद मिलते हैं। समय बदल चुका होता है, हम बड़े हो चुके होते हैं, हमारी जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आ चुकी होती है, लेकिन शिक्षक को देखते ही बचपन की कक्षा, स्कूल की घंटी और वो पुरानी आवाजें याद आ जाती है। होमवर्क किया? इतनी देर से क्यों आए? अच्छा, अब बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ये छोटी छोटी बातें हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन जाती है। कई बार शिक्षक हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि किसी पुराने संबोधन से पुकारते हैं और फिर से हम वही विद्यार्थी बन जाते हैं। और यकीन मानिए, विद्यार्थी भी कुछ कम नहीं, वो भी शिक्षकों को कुछ अलग अलग नाम से ही बुलाते हैं। यही है इस रिश्ते की खूबसूरती। समय बीत जाता है लेकिन अपनापन बना रहता है। और कभी कभी जीवन में जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तब अपने शिक्षक की कही कोई बात याद आ जाती है। वो बात हमें दिशा देती है, हिम्मत देती है और आगे बढ़ने का विश्वास देती है। एक शिक्षक हमें केवल ये नहीं सिखाता कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जीवन को कैसे समझना है। वो हमें सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का साहस देता है और कठिनाइयों के बीच भी सीखते रहने की प्रेरणा देता है। आइए इस शिक्षक दिवस पर हम अपने सभी शिक्षकों को हृदय से नमन करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें और ये संकल्प लें कि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक केवल एक विद्यार्थी का भविष्य नहीं संवारता, वो पूरे समाज के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान भी देता है। सुन रहे थे आप रसधारा, मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहें जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्रशासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सा में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। केरलम के त्रिशूर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात केपामंगलम के पन्नाम्बिकन्नु में एक कार के हाईवे पर खड़े एक ट्रक से टकराने से हुआ। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के छात्र थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। सामिन स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:15 हो रहे हैं और इसी के साथ आगाज होता है हमारे आपके महबूब उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का। आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल से और न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप से आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। पुरकैफ अंजुमन है मेरी अंजुमन अभी, पुरकैफ अंजुमन है मेरी अंजुमन अभी, है साज दिल पर याद तेरी नगमा जन अभी। जी हाँ सामईन, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज अंजुमन का ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शहनाज और आप सभी से कह रही हूँ सलाम सुबह कबूल फरमाएं। जो सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, जो सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, कई रो के मुस्कुराए कई मुस्कुरा के रोए। सामीन हम यहाँ पर रोने नहीं आए हैं न रुलाने आए हैं बल्कि हम मुस्कुराने आए हैं आपके साथ। हम अपने प्रोग्रामों के जरिया एक दूसरे से जुड़ेंगे, बातें करेंगे और मुस्कुराएंगे। सामीन हमने उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आपके लिए तरह तरह के गुलदस्ते सजाए हैं और आज देखते हैं आज अंजुमन में क्या है। हमेशा की तरह प्रोग्राम के आगाज हम करते हैं आईना से, तो लीजिए समाज फरमाइए आईना। और आईना में हम आज जिक्र करेंगे यौम असाजा के मुतालिक और यौम खैरात के मुतालिक। सामईन असाजा बच्चों को न सिर्फ दर्स सिखाते हैं बल्कि उनमें अखलाकी अकदार नज्म व ज़ब्त और खुद एतमादी पैदा करने का अहम किरदार अदा करते हैं। एक अच्छा उस्ताद रहनुमाओं, साइंसदानों, अदीबों और मुआशरे के बाशऊर शहरियों की बुनियाद रखता है। आज 5 सितंबर है और आज ही के दिन यौम असाजा मुल्क भर में मनाया जाता है। असाजा की खिदमत और उनके किरदार को खिराज तहसीन पेश करने का ये दिन होता है और ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है उनके यौम पैदाइश के मौका पर। इस मौका पर तलबा और वालदैन असाजा का शुक्रिया अदा करते हैं और तालीमी अदारों में मुख्तलिफ तकरीबें मुनक़िद की जाती हैं। सामईन हमें चाहिए कि हम असाजा की मेहनत की कद्र की निगाह से देखें, उनकी मेहनत उनकी अहमियत को समझें, उनकी सहूलत और पेशावराना तरक्की के लिए तआवुन भी करें और उनके काम को इज्जत दें, क्योंकि एक मुल्क को एक कौम को आगे बढ़ाने में असाजा का एक अहम तआवुन होता है। सामईनियों में असाजा हमें याद दिलाता है कि तालीमी मुआशरे की मजबूती की कलीद है। तालीम के ही जरिया मुआशरा मजबूत होता है और हर अच्छे उस्ताद के पीछे एक रोशन मुस्तकबिल छुपा होता है। तो आकाशवाणी की जानिब से आप सबको यौम असाजा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सामईन अब हम बात करेंगे खैरात के दिन के मुतालिक। आलमी खैरात का दिन यानी कि इंटरनेट

नेशनल डे ऑफ चैरिटी जो हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में खैरात, हमदर्दी और दूसरों की मदद का शऊर पैदा करना है। आज के दौर में बहुत से लोग गुर्बत, बीमारी और बेबसी का शिकार है, इसलिए उनकी मदद करना हम सब की अखलाकी जिम्मेदारी है। खैरात से पैसे देने का नाम नहीं बल्कि वक्त, तवज्जो और ताउन देना भी खैरात की एक शक्ल है, एक मुस्कुराहट है। एक खाना, एक किताब या एक किसी जरूरतमंद की एक छोटी से छोटी मदद, उसकी ख्वाहिश पूरा करना एक बहुत बड़ा नेकी का काम बन सकती है। ये दिन हमें सिखाता है कि एक बेहतर मुआशरा वही है जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हमें नेकी, इसार और इंसान दोस्ती की तरफ मायल करता है। हमें चाहिए कि हम इस दिन को सिर्फ रस्मी तौर पर न मनाएं बल्कि अमली तौर पर भी जरूरतमंदों की मदद करें। आप सुन रहे थे आईना, और आइए सुनते हैं यौम असाज़ा के मुतालिक एक खूबसूरत फिल्मी नगमा। हमने इसे लिया है फिल्म तारे जमीन पर से। आवाज है रमन महादेवन की, जबकि नगमा निगार है प्रसून जोशी और मौसिकार शंकर एहसान लॉय।

आप सुन रहे थे रमन महादेवन की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीन से, तारे ज़मीन पर से ये नगमा। नगमा निगार थे प्रसून जोशी, जबकि मौसिकार शंकर एहसान लॉय। सामीन, रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आपके साथ है आपकी मेज़बान शहनाज रहमत, आकाशवाणी कोलकाता के संचिता चैनल से और न्यूज़ ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। और रोज़ाना हमारा आपका साथ इसी तरह से बना रहता है। हमारा प्रोग्राम रोज़ाना सुबह 10:15 से शुरू होता है और 11 बजे तक हम आपके साथ रहते हैं। अब पेश है शहरनामा। सामईन, इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों पर मुश्तमिल हमारा हफ्त रोजा उर्दू प्रोग्राम शहरनामा पेशे खिदमत है। कलकत्ता और अतराफ की अदबी समाजी सरगर्मियों की झलक आज के शहरनामा में आप समाज फरमाएंगे। सामईन, हमारा मुल्क अपनी मतनू शकाफत, गंगा जमनी तहजीब और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क के हर कोने में मुख्तलिफ मजाहिब और अकायद के लोग मिलजुल कर अपनी खुशियाँ मनाते हैं। कोलकाता और मगरबी बंगाल समेत पूरे मुल्क में आज यौम असाज़ा मनाया जा रहा है और इसी के साथ ही गुज़िश्ता कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विलादत का त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया गया। तो आइए चलिए शहरनामा में इसी के मुतालिक देखते हैं क्या है। सामईन, हर साल 5 सितंबर को यौम असाज़ा इंतहाई एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। ये दिन मुल्क के अजीम फलसफी, माहिर तालीम और दूसरे सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की यौम पैदाइश के मौका पर यह उनकी याद में मनाया जाता है। उनका मानना था कि असाज़ा मुल्क के मेमार होते हैं। कोलकाता समेत पूरे मुल्क में यौम असाज़ा यानी कि टीचर्स डे 5 सितंबर आज मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे मुल्क के सदर अजीम फलसफी और डॉक्टर मुअल्लिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खराज अकीदत पेश करते हुए हम मनाते हैं और कोलकाता की तालीमी और सकाफती तारीख में इस दिन की अहमियत हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है।

क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन खुद भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर वाबस्ता रह चुके हैं, इसलिए कोलकाता में आज के दिन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज टीचर्स डे है जो कि हफ्ते का रोज है, इसलिए कोलकाता के बेशतर स्कूलों और कॉलेजों ने हाफ डे मनाया है ताकि इस दिन के तकरीबात को अच्छे से अंजाम दे सके, या कई स्कूलों ने तकरीबात को आज से एक दिन कबल ही इनेकाद कर लिया। कोलकाता के बड़े तालीमी अदारों और स्कूलों में इस बार जोश व खरोश देखा जा रहा है। कोलकाता के मशहूर स्कूलों में नोटिस जारी करके छुट्टी से 12वीं जमात के तलबा के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया था। तलबा असाज़ा के एहतराम में रस्क, मौसीकी और ड्रामा पेश कर रहे थे। कोलकाता के ही एक मशहूर स्कूल में भी टीचर्स डे का एहतमाम किया गया। कोलकाता की यूनिवर्सिटियों के तलबा ने भी सितंबर के आगाज में ही अपनी फैकल्टी मेंबरान के एजाज में शानदार कल्चरल शो मुनक्कित किया था। इसी तरह से IISER यानी कि कोलकाता के दीगर बड़े अदारे भी थिएटर में भी असाज़ा के एतराफ़ खिदमात के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कई समाजी तंजीमों के नेटवर्क जैसे कोलकाता के कई समाजी तंजीम शेक्सपियर सरनी पर वाक़ा एक ऑडिटोरियम में असाज़ा की मुल्की तामीर में खिदमात को सराहने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सामिन, हिंदुस्तान में यौम असाज़ा मनाने की रिवायत कब शुरू हुई? हिंदुस्तान में यौम असाज़ा मनाने की रिवायत 1962 में शुरू हुई, जब डॉक्टर राधाकृष्णन सदर बने तो उनके तलबा और मद्दाह उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि इस दिन के बजाय आप हर जगह इस दिन को असाज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाए। इस तरह से यौम असाज़ा की शुरुआत हुई। कोलकाता में कोलकाता को तो कहा ही जाता है शहर तरब यानी सिटी ऑफ जॉय, जो कि इल्म अदब का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में यौम असाज़ा बहुत ही जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी अजीम इल्मी शख्सियात की इस धरती पर उस्ताद को गुरु का दर्जा दिया जाता है। कोलकाता के स्कूलों और नामवर कॉलेजों में तलबा अपने असाज़ा के एहतराम में क्लासरूम्स को खूबसूरती से सजा रहे हैं। यहाँ तक के तकरीब में बांग्ला, मौसीकी, रविंद्र संगीत और ड्रामों को खास तौर पर शामिल किया गया है, जो इस दिन को दीगर शहरों से मुनफरिद बनाता है।

ग्लोबल टीचर प्राइज वगैरह भी उनकी खिदमात को के एतराफ में दिया जाता है। और हम अपनी बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अक्वाल जरिए से ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया था कि अजीम मुअल्लिम व फ़लसफ़ी मुसल्ला व माहिर तालीम साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि हकीकी असाज़ा वो है जो अपने तलबा को बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत फराहम करते हैं। उनका कहना था कि रूहानी जिंदगी हिंदुस्तान का खासा है। तालीम एक ऐसा हुनर और फन है जो इंसान को मुश्किल हालात के खिलाफ लड़ना सिखाता है। हमें इंसानियत को उन जड़ों तक दोबारा पहुंचाना होगा जहां से खुश नजमी और आजादी फले फूले। तो सामईन, आप सुन रहे थे शहरनामा में यौम असाज़ा के मुतालिक चंद बातचीत, और हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अक्वाल जरी भी आपको सुनाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सामईन, अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। मुल्क भर में जन्माष्टमी की धूम रही। जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, सबसे बड़े और मकबूल तरीन त्योहारों में से एक है। ये दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर लोगों ने उपवास किया कल रात के 12 बजे तक, जो कि कृष्ण जी के पैदाइश का वक्त है। लोग जाग कर भजन कीर्तन करते रहे। मंदिरों को बरकी कुमकुमों और फूलों से दुल्हन की तरह से सजाया गया। अगरचे कोलकाता बुनियादी तौर पर दुर्गा पूजा के लिए खास तौर पर मशहूर है, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार भी यहाँ इंतहाई अकीदत और रिवायती अंदाज में मनाया गया। नदिया जिला के मायापुर के मंदिर में इसका खास एहतमाम किया गया। इसी के साथ कोलकाता के तमाम बड़े मंदिरों में श्री कृष्ण के जन्मदिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस साल न्यू टाउन के इस्कॉन मंदिर में भी 2 सितंबर से 5 सितंबर 2026 तक खसूसी महोत्सव का इनेकाद किया गया, जिसमें अभिषेक, कीर्तन और कृष्ण लीला के ड्रामे पेश किए गए।

बालीगंज के करीब वाका बिरला मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव का इनाकात किया गया। इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन और खुसूसी सजावट के लिए अकीदतमंदों की बड़ी भारी भीड़ देखी गई। मानिकतला के राधा गोविंद मंदिर में भी रिवायती तरीके से पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 4 सितंबर को कोलकाता मेट्रो की खिदमात में भी खुसूसी तब्दीली की गई थी ताकि लोग रात की पूजा के बाद आसानी से अपने घर जा सकें। कोलकाता में मंदिरों में जन्माष्टमी के तकरीबात का अहम तरीन मरकज देखा गया। यहाँ हजारों की तादाद में अकीदतमंद जमा होते हैं। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों को नए और बेशकीमत लिबास से सजाया गया। घरों में भी बंगाली घरों में और तमाम घरों में इस दिन को बाल कृष्ण की पूजा की गई। छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में सजाया गया। मक्खन, मिश्री और मुख्तलिफ रिवायती मिठाइयां जैसे तालेर बोड़ा खास तौर पर तैयार करके प्रसाद के तौर पर बांटे गए। यहाँ पूरा शहर भजनों और शंख की आवाजों से गूंज उठा। सामीन, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर तमन्ना

सामिन, आप सुन रहे थे उषा अय्यर और आशा भोसले की आवाज में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से ये खूबसूरत नगमा, जो कि खराज अकीदत पेश करता है कृष्ण जन्माष्टमी के मुतालिक। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, जबकि मौसीकार आर.डी. बर्मन। और अब आपकी समातों के हवाले करती हूँ एक खूबसूरत कव्वाली रघुनाथ जाधव और पार्टी की आवाजों में। समात फरमाएं।

दीवारों में ये नूर ना होता, लहरों को मचलना कभी मंजूर ना होता, क्या लुत्फ जो

सामीन, रघुनाथ जाधव और पार्टी की आवाजों में आपने फिल्म आजाद से यह कव्वाली नुमा सुना। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, जबकि मौसीक़े से आरास्ता किया सी रामचंद्रम ने। सामीन, अब आपकी समातों के हवाले फिल्म हावरा ब्रिज से एक खूबसूरत नगमा पेश कर रही हूँ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, जबकि मौसीकी है ओपी नैयर की और नगमा निगार हैं कमर जलालाबादी। सुने ये सदाबहार नगमा आशा भोसले की आवाज़ में।

सामिन, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये नगमा, और अब हम प्रोग्राम के आखिर में आप पहुंचे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आपके साथ थी आपकी मेजबान शहनाज। और सामिन, हम आज की आखिरी पेशकश आपकी समातों के हवाले करते हैं और इसी के साथ कहते हैं आदाब। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारा अगला प्रोग्राम। आपसे दोबारा मुलाकात के वादे के साथ सामिन आदाब, और आपकी समातों के हवाले कर जा रही हूँ हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में खूबसूरत नगमा। समात फरमाएं।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएशियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएशियार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
2: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे फ्रॉम द फैमिली ऑफ आकाशवाणी एंड प्रसार भारती वी कन्वे आवर बेस्ट विशेस टू ऑल द टीचर्स ऑफ द कंट्री हु आर द बिल्डर्स of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaziar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shoaz mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing, and he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani,

0: of North Arcot District in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvapilli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became President of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teacher's Day." Thus, his birthday has since been celebrated as Teacher's Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहाँ से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी।
0: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार,
2: राष्ट्रपति महोदय,
0: ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का

0: अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी,
1: इस पुण्य अवसर
0: शिक्षा राज्य मंत्री
1: 82 शिक्षकों को डॉक्टर किया जा रहा है
0: सुकंता मजूमदार,
1: पहले 24 पुरस्कार विजेताओं पर हम एक
0: देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
2: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डी।
3: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल ICT उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदेह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के फोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन

0: मिशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंधारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल्स और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया
3: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन
2: whom
3: a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Union Minister of State for Education, Sri Jayan Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais, and now the first teacher to receive the award is Shri Divyendu Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
4: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब,
4: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: Now श्री दिनेश कुमार from पंजाब will receive the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
2: सुषमा तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग
4: पुकारा जा रहा है।
2: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड,
3: मुनमुन भट्टाचार्य टीचर फ्रॉम झारखंड, रियली प्राउड मोमेंट फॉर दीज नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड। शांतनु पात्र
2: वेस्ट बंगाल।
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
2: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
4: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
2: लनुन मोई मिजोरम,
3: फ्रॉम मिजोरम मिस लनुन मावी, एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
2: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
3: राष्ट्रपति जी and Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
2: मंजरी भी महाजन

0: हिमाचल प्रदेश,
1: और अब हिमाचल प्रदेश की मंजू जी बहादुर माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई। माननीय राष्ट्रपति
0: जय प्रकाश राव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स,
1: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है, वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के की छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें
2: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
0: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
2: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
0: Khushbu Kumari, Bihar.
1: और अब बिहार की खुशबू कुमारी माननीय राष्ट्रपति से अपना ये सम्मान ग्रहण करते हुए
0: अर्चना शुक्ला मध्य प्रदेश
1: समारोह के पुरस्कार
2: from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati Ji for her work especially on innovation.
0: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
2: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
0: her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
2: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
0: Suman Goel, Delhi.
2: To receive the award from the Honorable Rashtrapati Ji. And now Ms. Suman Goel from Delhi. And she specializes on ICT and digital tools in education.
0: Umakant Nayak, Orissa.
1: Rashtrapati ke haathon samman praapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
2: From Puducherry, Mr. Ganeshan S. is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
0: Mahadev Hanumant Shinde, Goa.
1: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
0: Wanglim Bam Govind Singh, Manipur.
2: And from the land of jewels, Manipur is Wanglim Bam Govind Singh.
0: Shiv Prasad Arvind Singare, Sainik School.
2: From Sainik School, Shiv Prasad Arvind Singare receives the National Teachers Award from the Honorable
0: Sangeeta
2: President.
0: Yadav, Central Board of Secondary Education.
1: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maranee Rashtrapati ke aage उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही है।
0: मोहम्मद जफर आलम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल,
1: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
0: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय।
2: And now the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
1: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया, और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
3: महाराष्ट्र के कैच धारो रोड स्थित निवासी माध्यमिक
2: विद्यालय
3: नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब, और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक

0: पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरदराज के विद्यार्थियों तक पहुंचाई। उनके नवाचार, आईसीटी आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनएफआर में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026

0: को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड्स हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है।

0: जिसके लिए श्री थंगाराज एन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिच्चू स्थित जीएचएसएस सिच्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉपआउट कम। आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया।

0: के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
2: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
3: गतिविधियों को। राष्ट्रपति नेशनल टीचर्स अवार्ड टू The first awardee in this session is Kavita Narasingh Rao Gitte from Maharashtra. And what a proud moment it is indeed for this
1: teacher. Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
3: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7DBR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
1: Mohammed
3: also his
1: Mustafa
3: students
1: Kamal
3: participated
1: Ladakh.
3: In ISRO competition.
2: Dusre charan mein ab Mananiya Rashtrapati बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
3: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, हु इज अ सोशल साइंस टीचर एंड ही हैज ट्रेन्ड 1000 टीचर्स, ही इज आल्सो अ मास्टर ट्रेनर। एंड नाउ फ्रॉम केरलम सुनील कुमार केपी, हु इज यूज्ड मलयालम आईसीटी एंड डिजिटल टूल्स। एंड द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, याकुन तामे, who
1: Rajesh
3: has worked
1: Kaluri,
3: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
1: Gabbar
3: for
1: Singh
3: education.
1: Bisht, Uttarakhand.
3: From Uttarakhand, Gabbar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
1: Manisha
3: module.
1: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
3: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
1: Palash Chaudhary, West Bengal.
3: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
1: Pushpa
3: food for
1: Prasad,
3: education.
1: Bihar.
2: और अब बिहार से पुष्पा प्रसाद अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह और
1: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली
3: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: डॉक्टर इफ्तिखार खान उत्तर प्रदेश
2: से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी
1: रत्न कुमारी एस कर्नाटका
3: फ्रॉम कर्नाटका रत्न कुमारी एस एंड शी हैज यूज्ड टॉय बेस्ड पेडागोजी फॉर एजुकेशन
1: मोहम्मद अयाज रैना जम्मू एंड कश्मीर
2: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष
1: अनिल कौशिक हरियाणा
3: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा ही हैज 40 मॉडल्स in his mathematics lab and is now receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji.
1: Ranjan Devnath, Tripura.
2: Aur ab Tripura se Shri Ranjan Devnath apna puraskar grahan kar rahe hain. Taaliyon ke beech sabhi unka swagat abhinandan kar rahe hain.
1: Shalini Kushwaha, Uttar Pradesh.
2: Uttar Pradesh se Shalini Kushwaha ko ye puraskar diya gaya hai unke shiksha ke kshetra mein adabh और अद्भुत कार्य के लिए
1: थंगराज एम तमिलनाडु
3: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम इज रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन एंजॉयबल एंड रिलेटेबल एजुकेशन
1: वर्तिका गुलाटी राजस्थान
2: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से उन्होंने नमस्कार किया चुकर माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में
1: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड
3: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन हियर इज रिसीविंग
1: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
3: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropouts from his school.

0: enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Vasantrao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati
1: Ji. Rajesh Bajoloi, Assam.
2: Assam se Rashesh Bajoloi अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
1: राजा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
2: कर्नाटका से इस वक्त पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
0: महोदय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के Anil Kumar, the Secretary Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashi Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now, telephone.
3: Architecture शिक्षा को sustainable design और real world learning से जोड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास, स्कूल, अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती है. वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं. शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण. वे इंजीनियरिंग साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है. वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं. शिक्षण शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया. भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की. भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा शोध और उद्योग के बीच एक

0: तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजिस पिछले 32 वर्षों से

0: सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एचएस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित पीएसजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री एमओयूज के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कला एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आईटीआई अरिकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने आईटीआई विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। कोविड 19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिली मोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन

0: एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल ITI में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
4: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
3: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही है। इन्होंने वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
5: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू एंड ही वर्क्स ऑन केमिकल इंजीनियरिंग एंड हैज ट्रेन मेनी स्टूडेंट्स
4: डॉक्टर विनय चमोला
3: और प्रोफेसर विनय चमोला, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है। BSc प्लानी से
4: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी आईआईटी भुवनेश्वर
5: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग
4: डॉक्टर मिथुन राधा कृष्ण आईआईटी गांधीनगर
3: डॉक्टर मिथुन राधा कृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आईआईटी
4: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल

0: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable
1: Rashtrapati
0: Ji. Professor
1: Vikram Vishal, IIT Bombay.
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है.
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया, NFSU गांधीनगर.
0: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
0: University, Gujarat.
1: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
2: रसायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से है.
1: Dr. Manisha Nigam, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
0: Hemvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
1: Dr. Amar Mohan Rao
2: Dasande, JNMC Vardha. को दिया जा रहा है. मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से.
1: डॉक्टर अरुण बाबू, एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश.
0: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स. डॉक्टर अरुण बाबू, ही हैज वर्कड especially on pediatric treatment and innovation and has
1: Manipur University
0: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri
1: Gans. Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
2: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
0: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
0: and Communication
1: Shivani
0: received the award
1: Karnataka
0: from the Honorable
1: University,
0: President
1: Bangalore.
2: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से.
1: प्रोफेसर राजीव चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
0: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इज फ्रॉम द पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
1: पॉलिटेक्निक बेंगलुरु.
2: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से.
1: डॉक्टर शशिकला S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
0: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Shashikala S receives the award for a work
1: Dr.
0: in electronics
1: Kanan
0: and electrical Rathinam. Engineering.
2: बहुत ही विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, ईरोड तमिलनाडु.
1: डॉक्टर सांदीपन प्रहलाद नरोटे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर.
0: From Maharashtra, Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
1: Dr.
0: India.
1: Dr. Harish A, Government
0: IIT, Killing and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
0: Harish A of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
0: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
0: Receives the award
1: Patel,
0: from the Honorable
1: Rajesh
0: President.
1: Bhai, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति.
1: हीरालाल शर्मा, Government Industrial Training Institute, Chomu.
0: And he has worked in the field of refrigeration and his special
1: Archana
0: work is on
1: Rakesh
0: troubleshooting
1: Jadav,
0: for
1: Government
0: ACs.
1: Industrial Training Institute, Adivasi, Triambakeshwar, Nasik.
0: And she works on fashion design.
1: Rina Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
0: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
1: Soumen Pandit, Toliganj, Government ITI.
0: Soumen Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
1: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
0: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
1: Sanjay Kumar,
2: कौशल विकास और
1: उद्यमशीलता
2: क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा.
1: ज्योति बाला राठौर, NSTIW, इंदौर.
0: She works on skill.

0: Skilling and Empowerment of Students from
1: Institute Pranab of Kumar Chaudhary, Central Tool
0: Indore.
1: Room and Training Center, Bhubaneswar.
0: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed
1: Koti
0: to receive the award from the Honorable President of India.
1: The
0: Honorable President of India has been escorted to her guest, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
0: स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी. आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ. 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी. उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है. देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित

उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्व विख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है।

0: आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान प्रेरणा नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और
3: राष्ट्रगान से निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
1: फ्रेंड्स, वी वर लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम, अ स्पेशल ब्रॉडकास्ट फ्रॉम दिल्ली ऑफ ऑनरिंग द टीचर्स, द वन हु make us, who create us. Salute to all the teachers from Akashvani Kolkata. Heartfelt gratitude and humble regards. Wishing you a very happy Teacher's Day. You are tuned into Akashvani Kolkata's Sanchaita channel, being broadcasted on 297.6 meters corresponding to 188 kilohertz on medium wave. We will get into a very short news break and then come back right at 1:10 for Western Music program. This is the 5th of September 2026, a Saturday.

0: China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarterfinal yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its ninth edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27

0: राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीवी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में

0: 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और

0: चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शंजन में मेंस डबल सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 160,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে।

0: আকাশবাণী কলকাতা, এখন দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है। प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्वशी। इसके अंतर्गत मोहिनी में आज हम सुनेंगे कुछ बातें सुप्रसिद्ध अभिनेत्री साधना जी से जुड़ी।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आरजू के इस गीत को अभी अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। यहां साधना सिद्धासानी, जिन्हें फिल्मी दुनिया में सिर्फ साधना के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, 1960 और 70 के दशक की बेहद ही लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल थीं। उनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची में हुआ था और 25 दिसंबर सन 2015 को मुंबई में उनका निधन हुआ। साधना ने शुरुआत में राज कपूर की श्री 420 में छोटी सी भूमिका की। इसके बाद सिंधी फिल्म अवाना से अभिनय की शुरुआत की। हिंदी फिल्मों में उन्हें बड़ी सफलता लव इन शिमला, जो कि 1960 में मिली थी, आई थी। इस फिल्म से उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिली और उन्हें लोकप्रिय बना दिया।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म असली नकली के इस गीत को अभी अभी आपने सुना। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। जी हाँ।

श्रोताओं, उनकी प्रमुख फिल्मों की बात अगर हम करें, साधना जी की प्रमुख फिल्मों की बात अगर हम करें, तो इसमें लव इन शिमला, हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब, वक्त, आरजू, वो कौन थी, मेरा साया, अनीता, इंतकाम, एक फूल दो माली, गीता मेरा नाम, और भी कितनी ही फिल्म हैं जिन्हें हमने जिसमें हमने साधना की अभिनय को देखा। साधना जी सिर्फ अभिनय में नहीं बल्कि इनका फैशन ऐसा था कि उस वक्त और अभी भी महिलाएं इसकी नकल किया करती हैं।

साधना की पहचान सिर्फ उनके अभिनय से नहीं बल्कि उनके खास फ्रिंज हेयर स्टाइल से भी बनी। यह हेयर स्टाइल आगे चलकर पूरे देश में साधना कट के नाम से मशहूर हुआ और उस दौर की युवतियों के बीच फैशन बन गया। मीडियम वेव 297.6 मीटर था, 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी में आज हम सुन रहे हैं कुछ बातें सुप्रसिद्ध अभिनेत्री साधना जी से जुड़ी।

साधना जी को एक मिस्ट्री गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन थी? मीरा साया और अनीता जैसी सस्पेंस फिल्मों में साधना के रहस्यमयी अंदाज ने उन्हें मिस्ट्री गर्ल की पहचान दी। उनकी खूबसूरती, आंखों का भाव और शांत अभिनय इन फिल्मों की खासियत थे।

साधना जी को उनके शानदार फिल्मी योगदान के लिए सन 2002 में आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें वक्त और वो कौन थी के लिए फिल्म फेयर एक्ट्रेस के लिए भी नामांकन मिला था। साधना का आकर्षण केवल उनकी सुंदरता में नहीं था, उन्होंने सादगी, स्टाइल और अभिनय तीनों को एक साथ अपनी पहचान बनाया। आज भी अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी, जी हां, लग जा गले जैसे उनके दौर के गीत और उनकी फिल्मों के दृश्य पुराने हिंदी सिनेमा के प्रेमियों के दिल में आज भी बसे हुए हैं। साधना की कहानी हमें यह बताती है कि असली सितारा वही होता है जो पर्दे से उतरने के बाद भी लोगों की यादों में, लोगों के दिल में समाए रहते हैं युगों तक, सालों तक, और न जाने इसके बाद भी कहां तक। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म हम दोनों के इस गीत को, और इस गीत के साथ ही आज का उर्वशी कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। अपने दोस्त अमर को दीजिए इजाजत। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल

0: ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकाश से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said, "A Vikasit Bharat will only be possible with quality education." She said a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The President was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today. The President stressed that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our Constitution. She said the achievement achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts

0: माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकाश से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम सीएसएस की सीएसएस शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. President Draupadi Murmu today said that

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्वशी। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आज हम छोटी सी बातें करेंगे शिक्षक दिवस पर। भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और राजनेता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुवनी में हुआ था। वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सन 1952 से लेकर 1962 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967। उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। उन्हीं की याद में हर वर्ष आज ही के दिन यानी 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन, जैसा कि मैंने कहा, कि डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षकों को के सम्मान में मनाया जाता है।

0: और अब आइए सुनते हैं एक इंटरव्यू आई डोनेशन फोर्टनाइट के ऊपर।
1: इन दिनों मुल्क भर में आंखों का अतिया यानी आई डोनेशन फोर्टनाइट चल रहा है। सरकारी वो गैर सरकारी सतह पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। एक ऐसा अमल जिसमें कोई शख्स मरने के बाद भी बसारत से महरूम अफराद की तारीख जिंदगी में रोशनी की बहार ला सकता है। अपनी कॉर्निया अत्या के जरिया ऐसा करना मुमकिन है। ये एक ऐसा फलाही अमल है जो दुनिया भर में नाबीनापन के इलाज के लिए किया जाता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके अगराज और मकासिद क्या हैं? इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमने मधु किया है एक खास मेहमान डॉक्टर आलोक अग्रवाल को। आप माहिर अमराज चश्म है और शहर के एक मारूफ अस्पताल से आप मुंसलिक भी हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के इस स्टूडियो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है।
2: धन्यवाद सर।
1: सर, यूं तो आपने हमेशा से मार्गदर्शन किया है हम लोगों को और जब भी मौका मिला है आपको हम लोग कर्ज देते आए हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त आई डोनेशन फोर्टनाइट का मौका है और ऐसे अवसर पर हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, हमारे जो सुनने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप इस विषय में बहुत ज्यादा जो है अवेयरनेस की जो कमी है लोगों में चीजों पर जो है आप प्रकाश डालें, रोशनी डालें।
2: जी,
1: तो मेरा पहला सवाल ये है कि हर साल आई डोनेशन फोर्टनाइट कब से कब तक मनाया जाता है और भारत जैसे देश में इसकी अहमियत कितनी है?
2: देखिए, आई डोनेशन जनरली भारत में 14 दिन का अंतराल में मनाया जाता है। अगस्त 25 से लेके सितंबर 8 तारीख तक मनाया जाता है, लेकिन अगर हम आई डोनेशन डे की अगर बात करते हैं वो जनरली जून 10 है। अगर आप वर्ल्ड डोनेशन डे की बात करते हैं तो
1: जी,
2: बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनको बीमारियां हैं आंखों की, जिसके वजह से उनका कॉर्निया डैमेज हुआ है और वो देख नहीं पा रहे हैं, और उनको वो रोशनी को हम लोग प्रदान करें इन फॉर्म ऑफ द कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं आई डोनेशन के बारे में बातें करने के लिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस अवसर को मनाने का मकसद क्या है?
2: मकसद काफी सारे हैं। एक है कि जो लोग कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस जिनको हो रहा है उनको हम रोशनी प्रदान करें, सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है।
1: अच्छा, इसके पीछे क्या कोई खास वजह है कि जिसे डैमेज होता है, किसी कह लीजिए कि खास तौर पर किसी कारण से?
2: देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगर आप ब्लाइंडनेस बोलेंगे तो 1.2 मिलियन देयर इज ब्लाइंडनेस हमारे यहाँ है, जिसमें से 25,000 से 30,000 कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। ये स्टैटिस्टिक्स बोलता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट 2020, उनके वेबसाइट पर ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है
1: जी।
2: और आप ये समझिए कि अगर 25,000 से 30,000 कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है तो कितनी जरूरतें होंगी हमारे यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के लिए।
1: भारत पॉपुलेशन के एतबार से बहुत बड़ी आबादी का ये है
2: जी,
1: और ऐसे में इस तरह की चीजें होना यकीनी तौर पर जो है हमारे लिए चिंता का विषय है
2: जी।
1: तो इसी संदर्भ में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, गलत फहमियां हैं या कह लीजिए टैबोज हैं, इस बारे में

0: आई डोनेशन करें या ना करें, क्या है नहीं है, इन चीजों पर बताइए।
1: देखिए, आई डोनेशन एक ऐसा चीज है, आप उनको रोशनी दे रहे हैं जिनको रोशनी नहीं है, तो ये सबसे पुण्य का काम है। मुझे लगता है कि सबसे नोबल कॉज है सोसाइटी के लिए। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि जब हम आईबॉल निकालते हैं तो पेशेंट पार्टी को लगता है कि डिस हो गया है।
0: जी जी।
1: तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट विद द कॉटन गॉज या स्वैप से देके आपको एक छोटी सी सिलाई कर देते हैं जिसमें कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता है। तीसरा कॉज इनको लगता है कि आई डोनेशन करने से पैसा लगेगा, तो मैं सबको बता दूं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट अगर आप आई डोनेशन करते हैं। एक चीज और मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग आई डोनेशन कर सकते हैं।
0: इसके लिए बाधा या कोई ऐसे कंडीशंस नहीं है?
1: नहीं।
0: तो सर, और इस सिलसिले में चलते चलते एक सवाल यकीनी तौर पर करना चाहूंगा कि आखिर आई का देखभाल कैसे करना चाहिए हमें?
1: सर, ये एक जनरल है जो कि हमको लगता है कि ये चाहे बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, सब लोगों को आई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन, ऑन द मोबाइल एंड ऑन द लैपटॉप, तो मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले बच्चे जैसे ही बड़े हो, एक साल के हो, दो साल के हो या तीन साल के हो, तो सबसे पहले उनका आई चेकअप कराना बहुत जरूरी है, इन फॉर्म ऑफ टू सी वेदर दीज बच्चे जो है रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं, या उनको कोई और तरह का आंखों में डिजीज है कि नहीं, लाइक मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, कोई और भी तरह का आंखों में समस्या हो सकता है बच्चों में, वो देखें। एल्डरली की जब हम बात करते हैं, ये सोचते हैं कि हमको कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई देने का मतलब सिर्फ चश्मा नहीं होता है, और भी डिजीजेस हो सकती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हर आदमी को साल में एक बार जरूर आंखों के डॉक्टर के पास जाके चेकअप जरूर कराना चाहिए।
0: अच्छा, जैसे आज के मतलब नए युग में हर चीजों पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो हावी है, तो ज्यादातर आज एक कदम भी हमारे लिए जो है चलना मुहाल है, बगैर मोबाइल के, बगैर लैपटॉप के, बगैर सिनेमा के, माने टीवी स्क्रीन के।
1: जी।
0: तो ये चीजें किस हद तक इफेक्ट पहुंचाती हैं?
1: सर देखिए, आजकल मोबाइल या लैपटॉप दैट इज आवर लाइफस्टाइल नाउ, हम उसके बिना भी नहीं रह सकते हैं और दूर भी नहीं रख सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं कि हम उसको कम करें। बच्चों को मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि जितना कम से कम, क्योंकि कोविड के बाद मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बच्चे मोबाइल और लैपटॉप चलाना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल हो गया है वो ऑनलाइन क्लासेस में हो गया है। तो जितना आप उसको कम कर दें या करवा सके स्क्रीन टाइम को लेस, तो उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि बच्चे लोग को आप आउटडोर्स एक्टिविटीज जरूर कराएं, जहां वो धूप में जाएं और सूरज की किरण उनके आंखों पे पड़े, और जिससे उनको बॉडी में जो विटामिन की कमी और आंखों में जो विटामिन की कमी है नेचुरली उनको प्रदान हो।
0: डॉक्टर साहब, आपने कोविड का जिक्र किया, एक समय था कि कोविड काल में सारी चीजें जो है वो बदल गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तरह तरह के गाइडलाइंस आ रहे थे, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया था।
1: जी।
0: उस समय ये कहा गया था कि आप ऑनलाइन क्लासेस करें।
1: जी।
0: तो ऑनलाइन के लिए यकीनी तौर पर हमें जो है वो मोबाइल का सहारा लेना पड़ा।
1: जी।
0: और उसमें एक चीज तो ये फायदा हुआ जरूर के बच्चे जो इस चीजों से वाकिफ नहीं थे, इन चीजों से वो पूरे तौर पर वाकिफ हुए, लेकिन इसका दूसरा साइड जो है
1: जी
0: वो बहुत ज्यादा आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ा।
1: जी। देखिए, मैं एक रूल बताऊंगा, हम लोग सबको क्रिकेट, बिकॉज इंडिया जो है सबको क्रिकेट खेलता, तो उसी उपलक्ष में मैं एक चीज बोलता हूँ, 20-20-20 रूल। एक्चुअली चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, हर भी अगर आप स्क्रीन बहुत लंबी देर देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, हर 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए आप देखें और अपने आई के मसल्स को रिलैक्स करें, मुझे लगता है इसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, थोड़ा पानी पिए जरूर बीच बीच में, और डायरेक्ट एसी से बचें, क्योंकि आजकल का जो एनवायरमेंट हमारा हो गया है जो एसी में रहने का, तो ड्राइनेस काफी हो गया है आंखों में। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को अगर ये करेंगे तो काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
0: सर, आपने वो 2020 की बात छोड़ करके एक नया मुद्दा को जन्म दिया है, और हमारी यंग जनरेशन इस चीज को बहुत डिटेल से जानना चाहती है, तो थोड़ा सा प्रकाश डाले तो वो हमारे श्रोताओं के लिए बेहतर।
1: 2020-20 रूल ये है कि हमारा लाइफस्टाइल हो गया एक क्लोज चैम्बर में हो गया है, हम या तो लैपटॉप देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये जितने भी करें बहुत ही क्लोज चैम्बर में हो रहा है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना है, हम भूल जाते हैं कि हमें आंख को ब्लिंक करना है, हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ और भी काम करना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम वर्क। तो इस सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको 20-20-20 रूल बताया है, ये करेंगे तो काफी हद तक ये कंट्रोल में आएगा, क्योंकि अगर आप दूर चीज देखेंगे तो आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, इसी से बचेंगे तो ड्राइनेस से आप बचेंगे, स्क्रीन अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो बॉडी में विटामिन की कमी है वो सूरज के माध्यम से आपको निकलेगी, खास करके बच्चों में। तो ये कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी

0: चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए?
1: जी, सच है कि छोटी चीजों पर ही ध्यान दे करके बड़े खतरे को टाला जा सकता है
0: जी।
1: इसी संदर्भ में सर एक और प्रश्न हमारे सामने है कि कौन कौन से लोग आई डोनेट कर सकते हैं?
0: देखिए, कोई भी 1 ईयर से अबव, जो हम लोग के गाइडलाइन फॉलो किए हुए बच्चे 1 ईयर से अबव
1: मेडिकल गाइडलाइन
0: जी, एक एवरेज, मे बी इट वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्योंकि आईबॉल अच्छे से डेवलप नहीं होता है, इसी वजह से बोल रहा हूँ मैं। 1 ईयर एंड अबव आप बच्चे हो बूढ़े हो, कोई भी आदमी डोनेट कर सकता है।
1: तो सर एक मान्यता है कि बूढ़े जैसे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनके मतलब आई साइट वगैरह कमजोर हो जाते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए भी ये पॉसिबल है?
0: जी, आप अगर आई साइट कम हो गया वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, आप आई डोनेशन आराम से कर सकते हैं। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है, ग्लूकोमा का ऑपरेशन हो गया, तो भी आप उसको आई डोनेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉर्निया अच्छा हो। सो देयर आर स्टिल मिथ अबाउट कि कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं जहाँ पे हम लोग कॉर्निया डोनेशन नहीं करते हैं। जैसे अगर इसको हम जनरल कैटेगरी में करें तो जैसे वायरल हेपेटाइटिस हुआ किसी बच्चे को, या बड़ों को एड्स हुआ, या वायरल इनकेफ्लाइटिस हुआ किसी भी अननोन कॉज का, या अभी आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि सस्पेक्टेड रेबीज, एक्चुअली अगर लास्ट 6 महीना के अंदर में कोई रेबीज कुत्ता अगर किसी को काट लिया
1: जी,
0: तो उससे खतरा बढ़ जाता है। सेप्टिसीमिया है, ये सब जनरल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आंख रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ, कोई भी इंट्राऑक्युलर इन्फ्लामेशन जैसे यूवीआईटिस है, आयराइटिस है, इस वजह से अगर ये कभी होता है तो उन लोगों को नहीं देना चाहिए। जैसे जन्मते बच्चे लोग में रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर्स का शिकायत है, उन लोगों को नहीं देना चाहिए। ये हम लोग जनरली आई के लिए हम लोग बोलते हैं कि कहाँ हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप पहाड़ पे रहते हैं या जंगल में के साइड में रहते हैं, स्नेक बाइट, यू नो स्नेक बाइट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जहाँ पे हम लोग को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दोज न्यूरोटॉक्सिन्स गेट्स रिलीज्ड एक्चुअली, तो उसके वजह से स्नेक बाइट पेशेंट्स को हम लोग को प्रॉपर हिस्ट्री लेके करना चाहिए। नाउ इफ यू सी कि जो लोग ड्रग अब्यूज है, यू नो आईवी ड्रग अब्यूज करते फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, इट शुड बी अवॉइडेड एक्चुअली, उन लोगों को भी अवॉइड रखना
1: ऐसे लोगों से मतलब परहेज
0: जी। एंड आजकल जो एक ट्रेंड चल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी शॉप्स में जाइए, पियर्सिंग का बहुत ज्यादा, टैटूज का बहुत ज्यादा प्रचलन चला हुआ है, बॉडी में टैटूज लगा रहे हैं, कान में, नाक में, सब कुछ आ रहे हैं। तो ये उनको जरूर सोचना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर में अगर किसी ने टैटूज कराया हुआ है और किसी वजह से उनका देहांत हो गया है, तो उन लोगों को, क्योंकि जब आप टैटूज कराते हैं या पियर्सिंग कराते हैं तो वो स्टेरिलिटी मेंटेन है कि नहीं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेस रहता है आपको इन्फेक्शन आने का। इन पेशेंट्स को अगर हम लेंगे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्चुअली फॉर दी आई डोनेशन के लिए।
1: डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जिन लोगों के वो जिस्म पर या हाथ पे या चेहरे पर वो लोग टैटू बनाते हैं, ये तो एक आम फैशन से हो गई है, खास करके नए जनरेशन में अक्सर देखा जाता है। तो इस टैटू का मतलब आई डोनेशन के से क्या रिलेशन है सर?
0: सर आई डोनेशन और टैटू, देखिए टैटू क्या हुआ कि एक सर्जिकल आप पियर्सिंग करते हैं बॉडी के अंदर किसी भी वजह से, आप
1: तो क्या आप, वो केमिकल प्रोसेस है?
0: सर इतना तो मैं डिटेल्स नहीं आपको बता पाऊंगा कि वो केमिकल है, क्योंकि जो पियर्सिंग जो स्किन के अंदर में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया, वेदर इट वॉज स्टेराइल और नॉट, सपोज कीजिए किसी और बंदे को एसटीडी था या एड्स था,
1: हाँ,
0: या कुछ था, और उसने सेम इंस्ट्रूमेंट को आपको टच कर दिया, तो वो जो आपको ट्रांसफर हो गया ना उनसे, तो अगर आपको पियर्सिंग भी कराना है या टैटू भी कराना है या कहीं भी कराना है तो एक काफी रेनॉयड या जो ऑथराइज लाइसेंस टैटू वाले हैं उनसे कराइए।
1: अच्छा, बात ही बात में एक और बात निकल आई कि क्या एचआईवी के जो पेशेंट हैं तो क्या ऐसे लोग भी मतलब अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया वो आई डोनेशन कर सकते हैं?
0: नहीं सर, एचआईवी पेशेंट्स को हम लोग जनरली आई डोनेशन थेरेप्यूटिक यूज में नहीं करते हैं, हम लोग उसको रिसर्च रूप में जरूर कर लेंगे, लेकिन इट हैज टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन टू द पेशेंट पार्टी।
1: तो डोनेशन से पहले आप लोग ये तमाम प्रोसेस चीज को जो है
0: हमारा हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर द आई डोनेशन। इस तरह की कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा, क्योंकि इसके साथ में एक चीज मैं भूल के आपको बताना, साथ में हम लोग ब्लड भी लेते हैं आई डोनेशन के दौरान। अगर इस पेशेंट्स को किसी ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसके वजह से हम उसमें निकल गया कोई भी तरह का इन्फेक्शन, तो अगर वो लोग ब्लड नहीं दे सकते हैं तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फॉर द आई डोनेशन ऑल्सो।
1: मैंने ब्लड क्या कॉन्ट्रोडिक्शन से मुराद,
0: अगर ब्लड हम नहीं निकाल पाए तो हमें तो उसका ग्रुपिंग तो पता चलेगा नहीं, पर उस ब्लड के अंदर में अगर कोई इन्फेक्शन रहा तो वो कैसे पता चलेगा? तो आज आप आई डोनेशन करने जा रहे हैं और किसी वजह से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिलेड आई डोनेशन होता है एंड बहुत बूढ़े पेशेंट्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग ब्लड निकाल नहीं सकते, तो जब अगर हम ब्लड, इसलिए पहले बोला जाता है कि आप ब्लड निकाल लीजिए, उसके बाद

0: आई डोनेशन स्टार्ट करिए, अगर ब्लड नहीं निकलता है हाँ। तब आप आई डोनेशन स्टार्ट मत कीजिए
1: हाँ हाँ। तो उसका फिर कोई मायने
0: नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल। एक और सवाल है सर कि जो पैदाइशी अंधे हैं क्या इनके लिए भी ये डोनेटेड आई काम कर सकता है?
0: नहीं सर, पैदाइशी अंधे लोग का क्योंकि आई बॉल ही डेवलप नहीं हुआ है सर, हम आई डोनेशन करते हैं ओनली फॉर दी कॉर्निया। और जो लोग पैदाइशी अंधे हैं जनरली वो प्री थाइसिकल में चले गए क्योंकि उनका आंख ही डेवलप नहीं हुआ, तो कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा वाकई में कि इनको कॉर्निया का प्रॉब्लम है या और भी कोई दिक्कत है।
1: सर ये एक कॉमन सोच है कि आई डोनेशन से मुराद ये कि पूरा आई बॉल, लेकिन मेडिकल टर्म्स में यह है कि सिर्फ कॉर्निया जो है
0: जी
1: उस पोर्शन को मतलब लिया जाता है
0: जी।
1: तो इन दोनों का जरा सा फर्क बता दीजिए।
0: देखिए क्या है, जब हम आई डोनेशन करने जाते हैं तो हमारा पूरा हम लोग ऑप्टिक नर्व से जहाँ के आई बॉल जुड़ता है जहाँ पर से रोशनी आती है हम लोग वहाँ से पूरे स्ट्रक्चर्स को उठा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: ना उसका रीजन क्या है कि आई बॉल जो है अगर आप देखेंगे एक मेंटेन्ड है फ्लूइड से अंदर में जिसको हम लोग विट्रियस बोलते हैं। अगर हम सिर्फ कॉर्निया काट के लेंगे अगर तो वो तो आंख पचक जाएगा और कॉर्निया तुरंत ही खराब हो जाएगा। सो टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्निया, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द आई बॉल, सो हमें पूरा से पूरा कॉर्निया काट के क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं वी कैन पुट इन टू दोस मीडियम और हम लोग इसको फिर लैब में ले जाके फिर फर्दर स्टडीज करके हम लोग इसको देखते असेस करते हैं कि ये किन पेशेंट्स के लिए फिट है कि नहीं।
1: अच्छा। और इसी सिलसिले की एक और कड़ी है सर कि आंखों के किस हिस्से को डोनेट किया जाता है और अगर एक आम इंसान चाहे तो कैसे डोनेशन के इस प्रोसेस में भाग ले सकता
0: है? देखिए एक आम इंसान आई डोनेट कर नहीं सकता है, वो प्लेज कर सकता है। डोनेशन उन्हीं का किया जाता है जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखों को आप डोनेट कर सकते हैं
1: जी।
0: जीता जागता आदमी कॉर्निया डोनेट नहीं कर
1: नहीं
0: सकता।
1: अच्छा। हादसे की तो कोई ना तो समय है और ना कोई घड़ी है, तो ऐसे सिलसिले में अचानक मैंने मन में है भी किसी के तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता?
0: देखिए अगर एक आंख इन्वॉल्व हुआ, अगर उनका कॉर्निया डैमेज हुआ तो जो मैंने प्रोसेस बताया था आपको, फिर हमको आई बैंक से उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट को उनको दिखाना पड़ेगा और फिर फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा कि उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं। अगर सिर्फ कॉर्निया खराब हुआ है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा, अगर चोट लगा है तो डेफिनेटली उनको कॉर्निया से पीछे के जो स्ट्रक्चर्स है आयरिस है लेंस है रेटिना है विट्रियस है ये सब जगह में चोट लगी है कि नहीं। अगर सपोज कीजिए कि उनका पीछे का ही पर्दा फट गया चोट लगने के बाद और हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है।
1: ओ, अच्छा, अगर वो बेमानी
0: हो गया, अगर आप इतना मेहनत भी करेंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि उतना फ्रूटफुल रहेगा। तो पूरा एक फ्रॉम दी कॉर्निया टिल दी विट्रियस मुझे लगता है देखना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड तब एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट को एक डिसीजन पे आना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है।
1: अच्छा सर, एक जीवित शख्स है व्यक्ति है वो अगर चाहे कि हमें अपना जो है नेत्र दान करना है आई डोनेट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, किस प्रोसेस से उसको गुजरना होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं?
0: सर देखिए दो चीजें, एक गवर्नमेंट सेक्टर हुआ एक प्राइवेट सेक्टर हुआ, जहाँ पे आप जाके रिक्वेस्ट फॉर्म ले सकते हैं कि मुझे अपनी आई डोनेट करना है। सो देयर इज अ प्रोसेस एक्चुअली, वो फॉर्म में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कि आप नाम पता आपका जेंडर रिलीजन क्यों आप देना चाहते हैं, बहुत सारे और भी फॉर्मेलिटीज हैं और ये हमारे आई बैंक के डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड हो जाएगा विद मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी एंड वो फिर ये सारा डिटेल्स देखने के बाद वो आपको तुरंत ही में आपको चेक करके आपको बताएंगे कि यस आप प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात सर आपने बताया इस चीज को, क्योंकि आज हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी की वजह से ही जो है आज हम लोग बहुत सारी चीजों से जो मुंह मोड़ते हैं और कोसों दूर भागते हैं, जबकि इन चीजों का जब हम खुले तौर पर जो है बहस करते हैं उस पर बातचीत होती है तो वो बड़े कायदे से इन चीजों को समझ पाते हैं और फिर खुद से आगे बढ़ करके अपना काम करते हैं। चलते चलते सर एक बात और भी ये पूछना चाहूंगा कि मौत के कितने घंटे के अंदर कॉर्निया को निकाला जा सकता है?
0: देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, समय चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी चेंज हो रहा है। जनरली बोला जाता है कि 6 आवर्स आफ्टर द डेथ आप कॉर्निया को डोनेट कर लीजिए, बट अगर हम इसको देखें दो माध्यम से देखते हैं, एक समर माध्यम एक विंटर माध्यम।
1: अच्छा,
0: अगर आप
1: सीजन का कुछ
0: सीजन
1: जी।
0: लेकिन जनरली 6 आवर्स इन समर एंड अगर विंटर में बोलेगा मान लीजिए सियाचिन में किसी को आई डोनेशन करना है तो वहां 6 आवर्स तो होगा नहीं, तो वो विंटर इतना माइनस में जो टेम्परेचर जा रहा है तो जनरली 6 to 8 आवर्स इसलिए बोला जाता है।
1: सर ये बंगाल में आई बैंक कितने हैं और कॉर्निया को कैसे प्रिजर्व करता है सर, इस चीज ये एक

0: बड़ा सवाल है सर कि आपको चीजें तो मिल गई लेकिन आप उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, संभालेंगे कैसे?
1: मैंने पहले भी बताया दे आर डिफरेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप कॉर्निया डोनेट होता है और वहाँ पे प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। जो टीम जाती है कॉर्निया आई डोनेशन के लिए, डोनेट करने के बाद हम लोगों के पास स्टोरेज है, स्टोरेज मीडियम्स बोलते हैं। नाउ दो स्टोरेज मीडियम, जैसे उसको एमके मीडियम बोलते हैं या ऑप्टिसॉल जीएस है या यूसॉल है, सो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म एक्चुअली जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मैकेनिज्म डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर रिकमेंड करता है आपको और आपका हॉस्पिटल क्या लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, उसका डेट क्या रहेगा, या और भी कोई भी फैक्टर्स है जो कि इससे एसोसिएटेड है, वो चेक करना पड़ेगा।
0: चलते चलते एक आखिरी सवाल जो है वो जरूर करना चाहूंगा कि अक्सर लोग आंखों की बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं और जिसके कारण ग्लूकोमा जैसी भयंकर बीमारी से जूझना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए, माने एक आम लोगों के लिए, आप बहैसियत डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे सर?
1: देखिए, मैंने पहले भी बोला, बच्चे हो या बूढ़े हो, साल में एक बार जरूर चेकअप होना चाहिए किसी के भी आंखों का, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। सेकेंडली, जहां तक आप ग्लूकोमा की बात करें, अगर कोई स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है, मतलब अगर चेक करवा रहे हैं उनके फादर या मदर को अगर ग्लूकोमा है, तो उनको पहले आई चेकअप कराना चाहिए सो दैट आप प्रिवेंट कर सके फर्दर डैमेज को।
0: अच्छा, लाइफ स्टाइल के वजह से, खान पीन के कारण से भी इस पर कुछ असर पड़ते हैं?
1: सर, खान पीन बहुत, जब आप अर्ली, जब ग्रोइंग एज में आप रहते हैं, टीन एज में रहते हैं, जहाँ पे अभी बॉडी आपका ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो खाना पीना तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली रोल प्ले करता है, बट साथ साथ में आपका अवेयरनेस, यू नो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर है या आंखों में और कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना सबसे अच्छा उपाय रहेगा।
0: सचे डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से ज्ञान का सागर जो है लोगों के सामने दिखाया और रखा, ये यकीनी तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे आई डोनेशन फोर्टनाइट पर एक साक्षात्कार। हमारे साथ थे डॉक्टर आलोक अग्रवाल और साक्षात ले रहे थे सरफराज अहमद। और अब पेश है पिछले हफ्ते शहर में हुए तमाम गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी।
3: नमस्कार, शहर भर की तमाम गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम बातें करेंगे पोषण सप्ताह, स्वच्छता और मौसम की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं जन्माष्टमी से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू पर्व है। वर्ष 2026 में जन्माष्टमी 4 सितंबर शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और व्रत के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियों का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं में धर्म, सत्य, कर्म और प्रेम का विशेष संदेश मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में उनके द्वारा दिया गया कर्म का संदेश आज भी लोगों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की प्रेरणा देता है। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस विषय पर एक कृष्ण भक्त ने कहा कि
4: तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी मुश्किलों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक जीवात्मा को यह समझना चाहिए कि भगवान है मेरी रक्षा के लिए, भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो अगर परिस्थितियां खराब भी होती हैं जीवन में, तो भी जीवन में किसी भी गलत निर्णय लेने से पहले ये संदेश देखना चाहिए, भगवद गीता देखनी चाहिए, भागवत पुराण देखना चाहिए और वहां से समझना चाहिए वास्तव में ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो किसी को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नकारात्मक विचारों की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए भगवान आए हैं, मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन ले, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल आपको ये बताता है कि ये वॉशिंग मशीन कैसे, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है।
3: आइए अब बातें करते हैं पोषण सप्ताह की। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह

0: आह के अवसर पर देश भर में लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। पोषण केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक एवं मानसिक विकास और बेहतर जीवन स्तर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पर्याप्त और संतुलित पोषण से बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के साथ साथ उनके सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं कुपोषण का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर आयु वर्ग के लोग अपने दैनिक आहार में पौष्टिक और संतुलित खाद्य पदार्थों को शामिल करें और स्वस्थ खान पान की आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2026 की थीम डिस्कवर द पावर ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की शक्ति को जाने है। इस वर्ष लोगों को यह समझाने पर जोर दिया जा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए महंगी या कठिन डाइट की नहीं बल्कि रोजमर्रा के भोजन में सही और संतुलित विकल्पों को शामिल करने की जरूरत है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, दूध एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को आहार का हिस्सा बनाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर एक विशेषज्ञ ने बताया कि
1: ये जो हम खाना खाते हैं, अगर हम अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार इसको अलग अलग ग्रुपों में भाग करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ग्रुप बनते हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा एक खाद्य ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, और लगभग हमारे खाने का 1/3 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें खाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा हमारा होता है प्रोटीन, और तीसरा हिस्सा है उसके बाद फसा, जिसको हम चिकनाई या फैट के नाम से जानते हैं, जिसमें घी, तेल, इस तरह की चीजें हम लेते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, वो है विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके बाद फाइबर।
0: आइए अब बातें करते हैं पश्चिम बंगाल में स्वच्छता को लेकर नए नियमों के विषय में। पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर से सार्वजनिक स्वच्छता और नागरिक अनुशासन मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर ₹100, जबकि सड़क पर कचरा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब या खुले में शौच करने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और व्यवहार में बदलाव लाना है। इसके साथ ही कचरे के उचित निस्तारण और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में प्रशासन के प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। आइए अब बातें करते हैं टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की। शिक्षक हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक दिवस उनके प्रति सम्मान और आभार जताने का खास अवसर है। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे महान राष्ट्रपति, दार्शनिक व शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यानी 5 सितम्बर को ये खास दिवस मनाया जाता है। आज पूरे देश में इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का मौसम। सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल में मानसून सक्रिय हो रहा है। राज्य के कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें हुई। दक्षिण बंगाल में कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में सड़कों और अंडरपास में जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भी भारी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और भारी वर्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया।
1: शिल्पी किशोर कुमार के कंठ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचाता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा हफ्तरोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां आपके रेडियो मेजबान अयाज अहमद रोहवी के साथ। यह प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी दस्तयाब है, या फिर मोबाइल फोन पर संचाता चैनल टैप करके ऑनलाइन रेडियो पर यह प्रोग्राम सुना जा सकता है।

0: ये आकाशवाणी कोलकाता का संचाता चैनल है और आप समाज फरमा रहे हैं अफरोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां अपने मेजबान अयाज अहमद रोहवी के साथ। अब बारी है नवाए शायर का। इस मौजू के तहत इस हफ्ते आप समाज फरमाएंगे मोहतरमा फौजिया अख्तर से इनका खूबसूरत कलाम। तो लीजिए हाजिर है सामीन उनसे उनका कलाम।
1: पस्तियों में उतर के देख लिया बारहा हमने मर के देख लिया। पस्तियों में उतर के देख लिया बारहा हमने मर के देख लिया। और तज़मीन है, इस जुदाई ने ऐसा हाल किया खुद को तकसीम करके देख लिया। इस जुदाई ने ऐसा हाल किया खुद को तकसीम करके देख लिया। कोई मंजिल नजर नहीं आई रास्ते से गुजर के देख लिया। कोई मंजिल नजर नहीं आई रास्ते से गुजर के देख लिया। उसकी आंखों में बस नहीं पाई आईने में सवर के देख लिया। उसकी आंखों में बस नहीं पाई आईने में सवर के देख लिया। उसकी उल्फत में कुछ कमी ना हुई उससे नफरत भी करके देख लिया। उसकी उल्फत में कुछ कमी ना हुई उससे नफरत भी करके देख लिया। और मकता है, आखिरी शेर है, एक गुजारिश किसी ने प्यार से की हमने मंजूर करके देख लिया। एक गुजारिश किसी ने प्यार से की हमने मंजूर करके देख लिया। पस्तियों में उतर के देख लिया बारहा हमने मर के देख लिया। एक और गजल के चंद अशआर। मतलब है, जिंदगी का वो एक बाब नहीं राह पुरखार है गुलाब नहीं। जिंदगी का वो एक बाब नहीं राह पुरखार है गुलाब नहीं। और तज़मीन है, ख्वाब आँखों का भी जवाब नहीं मैं कदा है मगर शराब नहीं। ख्वाब आँखों का भी जवाब नहीं मैं कदा है मगर शराब नहीं। आदमी है वो महताब नहीं देखने की उसे जो ताब नहीं। आदमी है वो महताब नहीं देखने की उसे जो ताब नहीं। दिल का मिलना ही शर्त है जो अगर फिर तो दोनों में कुछ हिजाब नहीं। दिल का मिलना ही शर्त है जो अगर फिर तो दोनों में कुछ हिजाब नहीं। उसने गम का जहान बख्श दिया मेरी चाहत का वो रुबाब नहीं। उसने गम का जहान बख्श दिया मेरी चाहत का वो रुबाब

उस पे धोखे का क्यों गुमान रहा, उस पे धोखे का क्यों गुमान रहा, एक हकीकत है जो शराब नहीं। उस पे धोखे का क्यों गुमान रहा, एक हकीकत है जो शराब नहीं। और ये शेर है कि उसको खुद पर गुरूर है शायद, उसको खुद पर गुरूर है शायद, लोग कहते हैं वो खराब नहीं। उसको खुद पर गुरूर है शायद, लोग कहते हैं वो खराब नहीं। और मखता है, लब पे बातें हजार हाँ है रिदा, लब पे बातें हजार हाँ है रिदा, उसकी बातों का भी हिसाब नहीं। लब पे बातें हजार हाँ है रिदा, उसकी बातों का भी हिसाब नहीं। जिंदगी का वो एक बाब नहीं, राह पुरखार है गुलाब नहीं। और गजल के चंद अशआर मतलब है, खुश ये दिल को लुभा के होते हैं, खुश ये दिल को लुभा के होते हैं, हुस्न वाले बला के होते हैं। खुश ये दिल को लुभा के होते हैं, हुस्न वाले बला के होते हैं। और तजमीन है, गर निभाओ तो जान जाओगे, गर निभाओ तो जान जाओगे, कुछ तकाजे वफा के होते हैं। गर निभाओ तो जान जाओगे, कुछ तकाजे वफा के होते हैं। जिद के आगे जो हार जाते हैं, जिद के आगे जो हार जाते हैं, मरहले वो अना के होते हैं। जिद के आगे जो हार जाते हैं, मरहले वो अना के होते हैं। और ये शेर है, सांस लेने से जान जाती है, सांस लेने से जान जाती है, ऐसे लम्हे सजा के होते हैं। सांस लेने से जान जाती है, ऐसे लम्हे सजा के होते हैं। और ये शेर आपकी नजर है कि मुंह जो बंदों के हक से मोड़ोगे, मुंह जो बंदों के हक से मोड़ोगे, वो बहाने वबा के होते हैं। मुंह जो बंदों के हक से मोड़ोगे, वो बहाने वबा के होते हैं। और मखता है, मुंह से कहता है और कुछ वो रिदा, मुंह से कहता है और कुछ वो रिदा, और इशारे दगा के होते हैं। मुंह से कहता है और कुछ वो रिदा, और इशारे दगा के होते हैं। खुश ये दिल को लुभा के होते हैं, हुस्न वाले बला के होते हैं। गर निभाओ तो जान जाओगे, कुछ तकाजे वफा के होते हैं। वाली गजल के चंद अशआर मतलब है, प्यार अपना भी कभी मुझसे जताए कोई, प्यार अपना भी कभी मुझसे जताए कोई, अपने जज्बात के अहवाल सुनाए कोई। प्यार अपना भी कभी मुझसे जताए कोई, अपने जज्बात के अहवाल सुनाए कोई। और तजमीन है, खूबियाँ कैसे तेरी तुझको बताए कोई, खूबियाँ कैसे तेरी तुझको बताए कोई, कैसे आईने को आईना दिखाए कोई। खूबियाँ कैसे तेरी तुझको बताए कोई, कैसे आईने को आईना दिखाए कोई। आलमे गैब से भी पर्दा उठाए कोई, आलमे गैब से भी पर्दा उठाए कोई, इस उदासी में मुझे आके हंसाए कोई। आलमे गैब से भी पर्दा उठाए कोई, इस उदासी में मुझे आके हंसाए कोई। मुझको ख्वाबों में बसाकर न भुलाए कोई, मुझको ख्वाबों में बसाकर न भुलाए कोई, ख्वाब आँखों को मगर कुछ तो दिखाए कोई। मुझको ख्वाबों में बसाकर न भुलाए कोई, ख्वाब आँखों को मगर कुछ तो दिखाए कोई। बार चाहत का कभी आके उठाए कोई, बार चाहत का कभी आके उठाए कोई, वादे मेहर वफा मुझसे निभाए कोई। बार चाहत का कभी आके उठाए कोई, वादे मेहर वफा मुझसे निभाए कोई। और मखता है, ख्वाब आँखों में रिदा आके ठहर जाते हैं, ख्वाब आँखों में रिदा आके ठहर जाते हैं, नींद ऐसे भी मेरी अब ना चुराए कोई। ख्वाब आँखों में रिदा आके ठहर जाते हैं, नींद ऐसे भी मेरी अब ना चुराए कोई। प्यार अपना भी कभी मुझसे जताए कोई,
अपने

आपको सुनाएंगे मुमताज अफसाना निगार बलराज मेनरा की अफसाना निगारी पर हमारी तफसीली गुफ्तगू। दोस्तों, बलराज मेनरा 1935 में होशियारपुर में पैदा हुए थे। जिंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने दिल्ली में गुजारा। इब्तदाई तालीम से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक मीर गालिब की तरह दिल्ली ही में इनका मस्कन रहा। लगभग 30 साल से ज्यादा अरसा तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 37 कहानियां लिखी, मगर उर्दू फिक्शन को एक नई तर्ज से मुतारिफ करवाया, जिस पर उस जमाने के कई अहम लिखने वालों ने एक खूबसूरत इमारत तामीर की। बलराज मेनरा की एक किताब सुर्खो सियाह के नाम से छपी। इन पर किताबें भी लिखी गईं, जिनमें बलराज मेनरा के नाम तमाम तर सफरी दस्तावेज और मयार वगैरह नुमाया है। बलराज मेनरा का अफसानवी मजमुआ मकतल उनकी 37 कहानियों पर मुश्तमिल है। बलराज मेनरा का शुमार अगर सच पूछिए तो एक मुमताज अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपनी तख्लीक के तवस्सुत से जदीद अफसाने को नई फिक्र और अनोखे तर्ज असलूब से माला माल किया। अफसाना निगारी के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा रिसाला शोर की इदारत भी है। सामीन, बलराज मेनरा ने अपने अफसानों के मौजूआत के लिए इन तजुर्बात और एहसासात का इंतखाब किया जिनसे वाकई का गहरा रिश्ता रहा। यही वजह है कि उनके अफसानों में शहरी जिंदगी, खुसूसन दिल्ली रेलवे स्टेशन, चौड़ी और चिकनी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बस स्टॉप, डॉक्टर, नर्स और बिजली के खंभों का जिक्र कसरत से मिलता है। मेनरा के अफसानों के मौजूआत शहर और उसी शहर के अफराद हैं। इनका इदराक शहरी है, वो एहतजाज पसंद अफसाना निगार थे। उनके अफसाने एक इनकलाब पसंद बागी के अफसाने हैं। खुद को पाने की जस्तजू, जबर के खिलाफ एहतजाज, कमतरी का एहसास अलामती पैकर उनके अफसाने की खसूसियात हैं। मेनरा गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत रखने के बावजूद सिर्फ 37 अफसाने लिखे, ये भी एक तरह से इनका एहतजाजी रवैया ही है, जिसमें हमारे माशरे की मुफाद परस्ती, मुनाफत, शोहरत और जर की बस दूसरों पर फौकियत ले जाने की हसरत, अदबी गिरोह बंदी, इल्म का फुकदान और बेअमली का दखल है। सामीन, मेनरा के अफसाने सिर्फ मौजूआत ही नहीं बल्कि असलूब और जबान बयान के एतबार से भी मुनफरिद हैं। इनके असलूब की सबसे बड़ी खूबी अल्फाज पर मुकम्मल गिरफ्त और जुमलों का इख्तिसार है। ऐसा लगता है कि वो माहिर नब्बास की तरह लफ्जों के हर नब्ज से वाकिफ हैं और सिर्फ वाकिफ नहीं बल्कि इसको बरतने का हुनर भी जानते हैं। मेनरा के ज्यादातर अफसाने 3 या 4 सफहात पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इनके मुख्तसर से मुख्तसर अफसाने में भी इतनी तहदारी और गहरी मानवियत है कि जिसको कोई दूसरा अफसाना निगार 100 सफहात में भी बयान करने से गुरेज नहीं करेगा। दोस्तों, गर्चा उनकी तख्लीकात अपने हम असरों के मुकाबले में कम हैं, लेकिन उन्होंने अपने मखसूस अलामती, इस्तियाराती और इमेजरी अंदाज में अफसाने लिखकर जदीद उर्दू अफसाने के दामन को माला माल किया है। सामीन, अभी आप बरगे ख्याल के तहत समाअत फरमा रहे थे बलराज मेनरा की अफसाना निगारी पर हमारी गुफ्तगू। अब प्रोग्राम के इस सफर के आखिरी पड़ाव में आपके जौक और लुत्फ को मजीद सुरूर बख्शते हुए शेर के साथ के सब्र पर दिल को अमादा किया है लेकिन होश उड़ जाते हैं अब भी तेरी आवाज के साथ, तो लीजिए हाजिर है हरिहरन की खूबसूरत आवाज में ये गजल कलाम है खुमार बारा बंकवी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा

0: कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वो घड़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को

0: पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रूबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: India today is self-assured.
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: Telling these stories with real pleasure.
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newsonair.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8%

0: आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
1: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थीं और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथे संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथे बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था, लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है, यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनोहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव

0: अपने भीतर ही समाहित कर लिया है। तो अब क्या अनुनय और क्या मनोहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार। अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर बसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही बसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वो अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं, जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं, कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, हीरे के प्याली में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है, दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहते हैं महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमएम पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीती का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानो दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए

0: आज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुक कर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनत कश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
1: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक थरथरा।
0: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
2: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
3: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
2: जी,
3: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
2: जी,
3: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
2: जी।
3: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
2: जी।
3: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदर्श मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
2: जी,
3: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
2: जी।
3: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था
2: जी,
3: लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
2: जी।
3: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया। और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बन गई।

0: गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्दकोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगु।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना इसका क्या मतलब। तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत की गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय वो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद।
0: जी,
1: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
1: रक्षा वाला भी समझ सकता है,
0: और एक प्रोफेसर भी समझता,
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
0: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल सा थर थर, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है, साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग,

मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं, तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने, बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में का क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है, तो कहीं 40-50% से ऊपर, और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती
घाट क्षेत्र में हिंदी के

0: प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में शत प्रतिशत रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा।